0: 8 गते शुक्रबारको दिन
1: पेट, छाती, सुगर प्रेसर र थाइराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन रौनिया एवं पाइल्स फिसर फिस्टुला विशेषज्ञ डाक्टर प्रभाकर शाहद्वारा बिरामी जाँच उपचार तथा अपरेशन हुने जानकारी गराउँदछौ। उक्त दिन दम रोगीहरूको लागि फोक्सो सम्बन्धी विशेष जाँच पीएफटी समेत गरिन्छ। स्थान केपी पोली क्लिनिक भुरीगाउँ बर्दिया।
2: असौ साल त ढुक्क नारे बल्ली
3: हा त पोर्सालिक बात सम्झोट आम्मिन्द लक्तिर हटबरा पानी बस्दा बेर अस्ति कहाँ रहेछ जाय त सोचो त लट्ठी ठिक्कन घर डान डान पानी बर्ष टिकी मन छटपटाइ लाग
2: हा त धन्न ब्यालम्ब डिक्टिकुम से सुरक्षित ठाउँ सरले नारे बल्ली
3: हा हो बदा
4: बर्खक ब्यालमा बहिक ढ्यार जोखिम रहत उहमार बहिया से बचकला पहिलहा सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रहिए। एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण का सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ढ्यार हिलको से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी।
5: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश।
6: ओहो हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त
7: तपाईलाई थाहा छैन नेपालगंजको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली
6: हो र त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त
7: एउटै छाता मुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंक्चर पद्धतिबाट ठिक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने मुख बाङ्गो हुने बाथ रोग ढाड दुख्ने मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
6: अन्कल सेवाहरू
7: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ हाड जोड्नी अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी भिडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे ईसीजी कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत दिशा पिसाब खकार थाइराइड बायोप्सी कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ। सम्पर्क फोन नम्बर 081533719 9840822229 र 9865222229।
8: सूचना समाचार अनि मनोरञ्जनको साथी रेडियो।

0: जीतपुर वाली यह साल तो निश्चिंत हो गवा गए।
1: हाँ तब पतलिया याद करो तो जू डराए लागत है। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
0: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
2: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होत है, यही नाते बाढ़ से बचे खर्ती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
4: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज। गर्जन सधैं बाघ सुन्छ।

खुदा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए खास बात खुदा में है।